0: It's 11 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
5: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
6: कुला तखुनन परिख्तियाख कुल इखकारी
7: अस्माख कुले बवली नखकारम चिकला नमी सिफात पीटी क्रीम इस्तेमाल अवल शुरू कर दी। जमा द मखना दादने द गुना तरसीरी और द मख तुरवाली बिल्कुल खत्म शवी दी।
6: वही अल्लाह दुमरा जर सिंगा
7: अस्मा सिफात ब्यूटी क्रीम यो हर्बल और मायरी प्रोडक्ट दी जे 5 दिन इस्तेमाल अवल सरा जमा द मखना डोले मसले खत्म शवे।
6: वाह ब्याहु जहम गानम जे जमा मखस्ता पशान खैस्तशी। कुला उस दारा तवया जे सिफात ब्यूटी क्रीम ब मुंगता चिरत मिलवेगी।
7: सिफात ब्यूटी क्रीम बस्तासुता हर कॉस्मेटिक्स इन जनरल स्टोर की पासने सरा मिलवेगी।

0: दारू।
1: वेलकम बैक वंस अगेन।
0: उस्मानवी
1: मुझे कहते हैं नई मुल्ला उमर जई। आप सुन रहे हैं अमन रेडियो नेटवर्क टांग एंड करक।
2: हर साहब ये नबी
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 88.4 03170906075। राजमा काल सरफ्ता सिफात कॉस्मेटिक्स चिकम और दुन की दी पखेरुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम। इना मुल्ला उमर जई से फ्रे जोड़े
1: कुर्बान शम। नई मुल्ला उमर जई जनाब। नई मुल्ला
3: उमर जई
1: सेहत न खदिर हो रहा
3: बराबर है तबीयत से सदा
1: मन ना सो खबर के जी कम देना।
3: दाऊद खबर को शेख सुल्तान
1: खा दाऊद से पखेरुना प्रोग्राम देखो खेगी।
3: ओ माशाल्लाह डेर खान रखे डेर जबरदस्त प्रोग्राम माशाल्लाह मुख खुदा से
1: मेहरबानी। और सिफात कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए कहना बीखी मिलाने दे रोड़े
3: यार ना मुझे उड़दा नहीं इस्तेमाल हो बहरहाल गर्मी तो डेरा कलाका मुझे ये चीज बड़ा मरण हो जाता कहता डेर सख्त गर्मी
1: इस्लामाबाद साता हूँ कहना बिल्कुल गर्मी तो दखपल जान दखपल सेहत ख्याल साथ कुछ अरे गर्म के दर बांधी हुई पोजुद मुखारक हुई पोजुद में गर्म के रखी जी ब्या वजागे परता इस्तेमाल हुए सिफात स्किन हर्बल स्प्रे
3: खा
1: सिफात स्किन हर्बल स्प्रे तो सर जब कम बल गिरी नास्ती टूर तो जमाल अखवा सलामुन अमीना।
3: वालेकुम सलाम।
1: और शरबत हो तो उसके खाक यख यख शरबत हो उसके मेहरबानी खुशहाल हो सीधा बंग सर रोर हो पहले मीने
4: रवड़ा
1: मा सर खुसरे पा खबर मीने मोहब्बत ने दी इतफाक दी तो इतफाक उसे गे कसा सो मलगिरी दी इतफाक सर जुन तेर के ठीक है जी।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM। एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ। इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं 0313 91 27 273।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांक की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

इश्मा क्रिक क्रीम हवाले सराय हबरे कवाले मामा हम अरुसा शॉपिंग सेंटर ना इश्मा क्रिक क्रीम रावल माशाल्लाह वा हफ्ता इस्तेमाल सरा जमा पे नरमी सफा औ हिस्ता शवे कजमा आवाज सो खम चरत चरत आवरी यूज ली जरूर इश्मा क्रिक क्रीम इस्तेमाल कई इश्मा क्रिक क्रीम पे चौदले ना अलावा बदन में दे हरश हुई इस्ता से बदन और सरवा सूजी ये मुसलमान पेम पर देवाजी रेशी जराशी दर टोल मसलों के जबरदस्त

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

और सिर्फ परमेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट इस्तेमाल को मसला बता सुशो खबर भाई बता सुको नूरी खबरें बजतर तक हो यानी दी परमेंट कॉस्मेटिक्स दी प्रोडक्ट फायदे चुकुमी दी प्रोडक्ट ची चिकुम शयान इस्तेमाल से ली दी अभी वजह माने भाई यो यो निशानी युवा मसला बखपल तासु सुशो नूर बज पता दर नको जबदर तय दा मसला दिस्ता दादिस्ता दादिस्ता जी औकन यानी तासु बराजो दिविष्टानु मसले मूवी औ कदी चेहरी मुनसलिक मसले मूवी से हल मौजूद दा परमेंट फेस वॉश परमेंट योदासी सीरम तैयार कराया दा अनुवार विदुन को ते परमेंट सीरम पहवाली से भाई वह खबर तको ब्या बता सुतरा जा जग जी डीर मलगरी दी अखा काल कभी मैसेज कभी जग जी ब्या उनी में बची सी लाड सुतासु ब्या जीरा जो बैलेंस लीड जो सिर सिर बेहतर था वो शो डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स एंटी जी बिल्कुल परमेंट कॉस्मेटिक्स सीरम पर हवाले से रचूं कि मैं खबर कहूं निवा वो खजुआर भी दुन को यो दासी सीरम चिकुमा राडू कोरता दासी उबो चिकुमो रंग खराब सुवाई या उबो तर रंग उरवासे उबो रंग चिकुम दा स्पिन ना खराब को

जरा वो चरंगा उपो तबा शो पे मेक्सिको नो ताबे अखपला गुरु रंग सिकुम दा बदल सी नो बिया सोच देखो आया आया पुमुख बांधी अगर तूर तूर तपीसी कम दी अगर धानु जिदी और दासी निशानु ना कोई वो मेहनत बांधे कोई भी तरीके हम न जी नो ब्या ब्या ब्या नो ब्या चो नो ब्या तासु वाले उर्ता परेशान है आया दितासु चेहरे अगर निशानु ना बा दख सिरम सरन जी दाखो किदाई हम नसी अनु अरविद उनको जिला टांको अरविद उनको दिमाग कुम जी ने तत्तशुरी कर रणवाल न तत्तशुरी सं या बे कुम जी न शुरी सं जी रणवाल अरविद उनकी दिगरा मिठू अरविद उनकी दिगरा हयात अरविद उनकी दिगरा बलोच अरविद उनकी दे टक्षार अरविद उनकी जी दे उमर अडे अरविद उनकी दे वजीरिस्तान इलाको अरविद उनकी दे पीजू रोड था परवार है जतर था पीजू रोड बांधे शालम अरविद उनकी गुलेमाम अरविद उनकी अभिजार अरविद उनकी मई खानी अरविद उनकी आओ अमाखील अरविद उनकी मलिजू अरविद उनकी चीर्त ची मौजूद यो चीर्त ची दाम अलिस्नर मौजूद दियो हरी वो कास्ता हरी वो था दा मैसेज दा पैगाम दा ऐलान दा खबरा दा चूस पैसे खपले बचाते को जिक्र ची दी परमिनेंट कॉस्मेटिक्स दा प्रोडक्ट ची कुम दी आची तासु इस्तेमाल कोल शुरी को नोचूर अजन बल्कि पूरा 30 दिन मनी बैक गारंटी सरा दी यानी कप्तान खास्ता तासुर ना मुतमाइन नो तासुर ना जी और ना खुशाल नो अगर दुकानदार था बल्तन अगर दुकानदार था चिकुम दुकानदार ना तासु अखस्ती दी अगर दुकानदार था वापस वर्षो और तो बोले जरूर अगर तासु आर्जे ने दार्जे दासी रहा वही ची 30 दिन पूरे फायदा ही नहीं इधर था पैसे और वापस जी बिल्कुल नो दूरा ज्यादा और दूरा दगा चिकुम दा गारंटी चिकुम दा आ सिर्फ जो प्रोडक्ट यानी द वन एंड ओनली परमिनेंट कॉस्मेटिक्स दर कभी जी अरविंद उनको उस नंदिता सुसरा खबरें अतरे बकू औ जी बिल्कुल दा प्रोग्राम बा टिक तर अतो बजो पूरी जारी भी टिक अतो बजो पूरी बतासु औ मुझे खबरें अतरे कहू अतो बजो पूरी बा तासु माता काल कहू मैसेज बकू गानवर भी दुन को परमिट कास्मेटिक सिकुम दा दिजिला टांग हरियो दुकानदार सरा मौजूद दा जी बिल्कुल नाम बे अखलु तासु प्रोडक्ट ब मिलावी जी दरता जी बिल्कुल कचा चलो जी जब उस नंबर देता हूँ शुम जगची तासु हाँ इंतजार बवी नंबर ब नोट को नंबर दरतवायम यो कदम प कदम यो लफ्स यो लफ्स एक एक मुझ नहीं लिखला जी यो इवाई इन सब अदरता शंशा चुप आसानी में पासानी है उल्लेख घंटे बर टंगाओ शादा नोबिया रेडियो तैयारियो जी नंबर दा नंबर नोट को 0304992538 यानी 0304 99 25 388 0304 99 25 388

शायद अप्रूव अच्छा बेहदी मैसेज करा ओके जी मैसेज वहां है कन कुर्बान मैसेज में दी वाला उम्मे वेला मैसेज दे शादा जी

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM।
4: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले। अवेलाजी सुनत अमल ले।
5: उस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ी दली यो डेर गर्जिदली कड़ी दली यो
4: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
5: और दोनों मालूमात दे पारा पदगल नंबर काल कवले शे
4: 0319-55-23-404
6: क्या आप बालों के गिरने खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं बालों को दे कुदरती चमक और नरमी खुश्की और हेयर फॉल में मददगार डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत घने और सेहतमंद बाल अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है तो पता याद रखिए हमजा जनरल स्टोर न्यू बनारसी होटल टांग सिटी मोबाइल नंबर 0344-93-63-780 व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435
0: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क.
2: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: ओके सी नेक्स्ट कलर अब दिशु गुरु सुख दिरे सर अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी कुर्बान सुख दिकम से ना
1: सलाम ना खबरे का उमर खबरे का
0: जी सलाम ना उमर खबरे का उमर भाई सर अंगे शे जुड़ी बरोबारी
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबरक आए
0: अल्हम्दुलिल्लाह सी सुम अल्हम्दुलिल्लाह सी तो सहर कलाई सड़ी मिशी आयो
1: जरूरी है 40 घंटे में जरो के आवाज को घंटे ना खले वालिद साहब वीडियो में दा
0: असल के दस खबर दो कन औरो चले कदा दी पीटीसी नंबर दा पदी के मुस्त बिल्कुल दी द नंबर पता हन लगी सी सो काल कभी सो काल ने कभी कहना बिल्कुल पता न लगी त खफा नशे लक मुश्किल हदा सी ने कुछ दिचा काल अटेंड को दिचा ना अटेंड को मुस्त पर खटूल यु शदी टूल दी मुश रुणा दी से
1: अच्छा 40 घंटे में दर तो ग्लिच ममाज होए वाला गाना वाला गवा
0: अच्छा जी दमामा जुया लेवने शो द सरसांग थ्रू वाला
1: आ दा दा तो रे वने दा
0: सही द जी जा कोशिश कम द सरसांग थ्रू वाला गाना दर तपले को हसी
1: शाबाश जरे प्ले को बे वद की रु से वीडियो मोला
0: ओए ओए जार दे स लक सबर को बुद ओची बुद सला न मे द प्ले को सही दो डेरा मनन से डेरा मन चोदन से असड़े उदन से अजय तो उदस से सब बच्ची शेका ऊपर गाने बन और देखो फरमाइशी प्रोग्राम ने दिल से ज्यादा नो टेंशन प्रोग्राम ने तास बिल्कुल सी बिल्कुल जी रुतल ने शे और जिक हम देखे नमस्ते खबर है तेरे करवले शेफ ऑफ प्रोडक्ट्स बाने खास गुल गिलावरी तुनको बिल्कुल जी तुसे नोटेंशन प्रोडक्ट्स रख से लेशे पॉडबर शे इब्राहिम गुल ना बिल्कुल जी रुडल शे से मलो वाले शे हास दो दिन लवासी पॉडबर शे शेख उतार रुडमंदी भक्ति रहमान एडसी और रहमान से सरह मुश प्रोडक्ट्स मिलावे शे नोटेंशन कॉस्मेटिक्स फॉर एग्जांपल लेने के लिए हमजा जान स्टोर शे खान से सरह मिलावे शे शेख गरेगे से मतुलाम भाई सरह मिलावे शे ताहिर जनान स्टोर सरह मिलावे शे और गुलसा सरह मिलावे शे पॉडबर के से दिन लवासी जमा गुल गुलाबरी तुनको नोटिंशन तमाम प्रोडक्ट्स आसो मिले विशेष जी पासदर पर जाफर हाल पर जालबदर मार्केट की सी द दिन लवाची जरबथान इसे दिमुच मेंड से बटर दास रहा तू से मिले बदले शे पास दाम मार्केट के या रमजान मार्केट के हासी

पछि तुमसे शिकवा करूंगी तेरा, तुमसे शिकवा करूंगी तेरा, ये जो हशर किया है तूने मेरा पसंदीद कोई सुलोखा से अजोनेरा बख्शने से रसी तेरे गड़बड़ देर अलश जख्मी कड़े दे देखा गजल दे जख्मी कड़े दे से फिर इस राम ने मत उलासी व दशी करे न मनन से पुरहन विची अफसोस पर मोबाइल शी में मेमोरी नष्ट केनी तो न में रिकॉर्डिंग को तेरे मनन जी थैंक यू।

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क 88.4
2: your station.